0: అంగా ఉండండి, మీరు ఎవరెస్ట్.
1: स्वर्गदारी चलचित्र मन्दिर घोराई दाङमा भव्य प्रदर्शन भइरहेका छन्. नेपाली कथानाक चलचित्र चमेलीको पोइ.
2: बा
1: एक योद्धा पेन्सन पट्टा.

0: साथै हिन्दी कथानाक चलचित्र दृश्यम 3 पनि भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ। हेरेर भरपूर मनोरञ्जन लिनुहोस्।
1: तू गोवा का सबसे बड़ा हार्ड वर्किंग क्रिमिनल है।

0: यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम एक थोप्लो 4 मेगाहर्ज।
1: मध्य पश्चिम टाइम चेक।

को स्वास्थ्य प्रति सचेतना अभिवृद्धि गर्न असिन शिविर उपयोगी हुन बटवा राख्ल। व्यस्त कार्यतालिका औ कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारीका कार्यक्रम कौनो अवस्थामा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्न कठिनाई हुन कर्से। कार्यस्थल मजु आयोजना गर्जिन शिविर से स्वास्थ्य जाँच गर्न अवसर प्रदान गर्न उहाँका कार्यालयहीन। विशेष अतिथि सबिन प्रयासको स्वास्थ्य हन प्राथमिकतामा धैकन समुदायमा सेवा पुगिन उद्देश्य सहित आयोजना करगिलक शिविर प्रशासनीय रलक बटवा राख्ल। उहाँसे सामाजिक संस्थाको नक्से नागरिक स्वास्थ्य शिक्षा हो जनचेतनाको क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न उल्लेख गर्दै असिन कार्यक्रमसे समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न धारणा धरल रह। उहाँको अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर विभिन्न संस्था स्वास्थ्य संस्था व सुरक्षा निकायबीच सहकार्य आवश्यक बा। कार्यक्रममा संयोजक सुदन पौडेलसे स्वागत मन्तव्यसे शुरू करल रह। कलसे आशिष उप्रेतीसे जेसिस आस्था पाठ करेल रह। कार्यक्रमको सहजीकरण त्रिभुवन नगर जेसिसको महासचिव बाबुराम पाण्डे करल रह। बिहानसे अवरूद्ध हुइलक घुराई कुहिरे पानी सड़क आज सुचारू हरहल टिप्पर कठक्कर से बालक मृत्यु हिलपास स्थानीय से दोषीन कार्यवाही कर पर्ना माग धरती सड़क अवरूद्ध कर रह। सड़क अवरूद्ध खुलिना ओ पीड़ित परिवार हन न्याय दिलेना विषय में नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय सचिव सबिन प्रियासन ओ प्रहरी नायब उपरीक्षक डाक्टर हेम बहादुर केसी का विशेष सक्रियता में छलफल हुई रह। स्थानीय वासी पीड़ित परिवार ओ स्वर्गद्वारी टिप्पर व्यवसाय समिति बीच हुईलक छलफल पास सहमति जुटलक हो। सहमतिसँग अवरूद्ध सड़क सञ्चालनमा आरहल सहमतिमा घटनाको अनुसन्धान गरिकन दोषीहन कार्यवाही गर्न वा पीड़ित पक्षहन कानून अनुसार क्षतिपूर्ति दिन उल्लेख करगिल बा। प्रहरीले दुर्घटनामा संलग्न टिप्पर चालक हन नियन्त्रणमा लेस्याकल जनाराखल दाङ्क घुराई लमही सड़क खण्ड अन्तर्गत घुराई उपमहानगरपालिका तीन कुरे पानीमा टिप्परको ठक्करसे प्युठानको नौ बहिनी गाउँपालिका एक निवासी छ वर्षीय राजन अधिकारीको मृत्यु हुल रह। काल सञ्जय रा एक ख 25/11 नम्बरको टिप्परसे ठक्कर दिएर गम्भीर घाइते हुलक बालक अधिकारीको उपचारको क्रममा कोराई स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु हुलक जिल्ला प्रहरी कार्यालय जानकारी दिराखल। घटना पाछ आक्रोशित स्थानीयवासी दोषीन कार्यवाही कर पर्ना ओ पीड़ित परिवार हन न्याय दिए पर्ना माग धरती कुरे पानीमा कोराई लमही सड़क खण्ड बिहान 11:30 बजेसे अवरूद्ध हुल रह। सड़क अवरूद्ध हुल पाछ उह मार्ग होकन आवाज जावत गर्न सवारी साधन हन प्रभावित फिल रह। ओ दशैं तिहार हन लक्षित कैकन दाङ्क घोराईमा संचालित करगिलक सुफत मूल्य पसलमा उपभोक्ता हुकन चहलपहल बरल बा। चाडपर्वको बेला चिनी ओ नवानको माग बरलसँग साल ट्रेनिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको दाङ शाखासे सञ्चालन करलक पसलसे 20 दिनमा 27 लाख रूपियाँसे बढ़ीको चिनी ओ नवानको मूल्य बिक्री हो रहल। घोराई उपमहानगरपालिका 15 असोज 100 सञ्चालनमा अहिलेको सुफत मूल्य पसलमा 4,808 जना उपभोक्तासे चिनी ओ नवान खरिद करलबाट उक्त अवधिमा 27,55,220 रूपियाँ बराबरको सामग्री बिक्री हुलक साल ट्रेनिङ कर्पोरेशन लिमिटेड दाङ शाखा जनाराखल। शाखा प्रमुख रामबाबु प्रसाद गुप्ताको अनुसार 23,077,000 रूपियाँ बराबरको 23,701 किलो चिनी बिक्री हो रहल। कलसे 3,78,120 रूपियाँ बराबरको 15,755 किलो नुन नुन बिक्री हो रहल। पसलमा दैनिक 6-7 सम्म उपभोक्ता चिनी ओ नुन खरिद गर ऐनाको करलबाट चार पर्वको बेला चिनीको माग उच्च रहलक भन्से पसलमा उपभोक्ताको लाइन लग्न करलक शाखा प्रमुख गुप्ता बटुवा राख्ल। हुइठा ताजुक थारूवाचक मध्यपश्चिम खबर अत्रह काल सन्ज्याफे थारूवाचक मध्यपश्चिम खबर सुन सेक्ने भाटी अखसक खबर मस्ते समाचार कक्ष कसकु संग्रहसँग मैं शालिक राम चौधरी विदाहिटु रिडी मध्यपश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

0: वायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सब कनेक्टेड
1: स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आने बारे सूचना
2: वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा महिला कैंसर रोग सर्जन बीपी कोईराला मेमोरियल कैंसर अस्पताल चितौन में पूर्व कार्यरत डाक्टर प्रवीण योगी को हाई 15 सड़क विभाग रोड में दिव्य फार्मेसी में बिरामी को चेक जांच गरिने हुँदा समयमै नाम दर्ता कराई विशेषज्ञ सेवा को लाभ लिनुहोस् र आफ्नो रोग को पूर्ण निदान गर्नुहोस्
1: विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा दिइने सेवाहरू
3: महिनावारी में समस्या महिनावारी रोकिनु
1: श्वेत पर्दरक पिसाब पोल्ने समस्या
3: पाठे घर में समस्या पाठे घर खस्ने को समस्या
1: पाठे घर में मासु पलाउने
3: निसंतान महिला को चेक जांच
1: स्तन कैंसर पाठे घर में कैंसर भय न भय को चेक जांच लगायत का महिला संबंधी संपूर्ण रोग को आधुनिक मशीन द्वारा चेक जांच गरिनुका साथै उचित परामर्श का लागि संपर्क गर्नुहोला
4: बिरामी जाँचने मिति यही असोज 30 गते शुक्रवार
1: सम्पर्क दिव्य फार्मेसी घोराई 15 सड़क विभाग रोड दाङ फोन नम्बर 082-595-410 मोबाइल नम्बर 98-478-28913 र 98095-12871
3: फोनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सकिनेछ

0: 91 4 मेगाहर्जमा तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम।
1: ओखती साबुनको अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल। लामो अनुसन्धान पछि आविष्कार भएको रुघाखोकी, नाकबन्ध, जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल, जडीबुटीको शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल, मात्र रु 50 मा।
2: गुराहीको लागि आधिकारिक विक्रेता भूषाल स्टोर, हस्पिटल रोड, गुराहीदान। फोन नम्बर 0825612010। थप सम्पर्कका लागि हिमालय स्टोर बाल मन्दिर अगाडि, निरज स्टोर सब्जी मण्डी नजिक र प्रवेश श्रृङ्गार दूरसञ्चारदेखि पश्चिम तर्फ।
3: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छाना मुनि।
4: वरिष्ठ हाड जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव, बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली घोराहीमा।
5: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू:
4: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हाड जोर्नी सम्बन्धी अपरेशन सेवा,
6: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू।
7: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा।
8: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा।
9: नशा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा।
10: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा।
11: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसीद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा।
12: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्यद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा,
13: साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
3: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली, सडक विभाग ओह्रालो, घोराई जाँच। फोन नम्बर 0825362018।

0: वायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट जो 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सबै कनेक्टेड।
1: होइन हो साथी, आज निकै तनावमा छौ त। के भो भने?
2: के भो भनौ, अहिले नै साथीको बिहेमा जानु पर्ने, सुट नै छैन, के लगाएर जाने होला भनेर सोचिरहेको छु नि।
1: नारायणी टेलर छँदैछ नि, त्यहाँ त हरेक साइजमा रेडिमेड कोट प्यान्ट दौरा सुरुवाल पाइन्छ नि, चिन्ता मान्ने कुरै छैन।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरिलाई।
1: अब दाँत भर्ने, दाँत फाल्ने, नयाँ दाँत राख्ने, दाँत सफा गर्ने, चम्किलो बनाउने, बाङ्गो टिङ्गो दाँत मिलाउने, इम्प्लान्ट सर्जरी आदि, दाँत मुख गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार एकै ठाउँमा। प्राइम डेन्टल क्लिनिक।
2: प्राइम डेन्टल क्लिनिक नयाँ अत्याधुनिक बिरामी मैत्री क्लिनिकमा अनुभवी चिकित्सक डाक्टर आयुष गौतम तथा अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा उपचार भइरहेको छ। स्थान घोराई दाङ तुलसीपुर चोकदेखि 50 मिटर पश्चिम रोडमा। सम्पर्क नम्बर 082-591-794, मोबाइल नम्बर 98-22-87-74-94।

0: सुरक्षित जीवन जीन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैं भरी लाए।
1: अब दाँत भर्ने, दाँत फाल्ने, नयाँ दाँत राख्ने, दाँत सफा गर्ने, चम्किलो बनाउने, बाङ्गो टिङ्गो दाँत मिलाउने, इम्प्लान्ट सर्जरी आदि दाँत मुख गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार एकै ठाउँमा। प्राइम डेन्टल क्लिनिक
2: नयाँ अत्याधुनिक ग्रामी मैत्री क्लिनिकमा अनुभवी चिकित्सक डाक्टर आयुष गौतम तथा अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा उपचार भइरहेको छ। स्थान घोराईदाङ तुलसीपुर चोकदेखि 50 मिटर पश्चिम रोडमा। सम्पर्क नम्बर 0825917494, मोबाइल नम्बर 9822877494।
3: नेपाली कलाहरू रंग सँगै बाँच्छन्,
4: एभरेस्ट कलरले खुशीहरू

0: ಗಂಗಾವರೆಗೆ ಮೇರು ಎವರೆಸ್ಟ್.
1: कोसेनी बेकरी बीएन फूड ट्रक को फेसबुक पेज फलो लाइक शेयर कर 50,000 कार्टुन पुरस्कार जित्नुस्। गोजी वाला मोबाइल झिकी हाल्नुस् त अनि कोसेनी बेकरी बीएन फूड को पेज फलो गर्नुस् पुरस्कार जित्नुस् भयो त मजा।
0: संचालक नरेश कुमार श्रेष्ठ।

0: साथै हिन्दी कथानक चलचित्र दृश्यम 3 पनि भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ। हेरेर भरपूर मनोरञ्जन लिनुहोस्।
1: तू गोवा का सबसे बड़ा हार्ड वर्किंग कैमरा है।